0: खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीजें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिस्क खाते हो। जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में निशानी है। और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना, फिर हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा। उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया, फिर वही तुमको मौत देता है, और तुम में बाज ऐसे होते हैं कि निहायत खराब उम्र को पहुंच जाते हैं ताकि बहुत कुछ जानने के बाद हर चीज से बेइल्म हो जाएं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, कुदरत वाला है।
1: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا

الخوف بما كانوا يصنعون. ولقد

0: उसको भी। हाँ, अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते के गुनाह करने वाला ना हो और न हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।
1: वला

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मीरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

अॼु असां प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां दोस्तनि जा नाला खणंदासीं, जिन बि दोस्तनि नाला लिखाया आहिनि, ऐं वरी कुझु 10 बजे खां बाद में नाला खणंदासीं। ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां। दोस्तनि यादि कयो आहे ॻोठु मोलण माशी लॻे वॾनि महरनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ऐं ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, मोहम्मद कासिम चांडियो ॻोठ खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, फहद अकबर, अहसन अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ऐं नारा स्टाप सखर लॻ सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो, यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशाद अली महेसर, ऐं दोस्त आहिनि मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी, ॿारनि जी वॾी महिरबानी, ऐं लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां इमदाद अली दायो, दिलबर सैफला ऐं जवाद दायो, ऐं ॻोठ सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां हाजी सोराब अली मंगरियो, फरहान अली मंगरियो ऐं नज़र मोहम्मद मंगरियो, ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि खेली, इनायत अली ख़ासि खली झंडो मरी खां, ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई यासमीन मलिक, ऐं भाग्यो खान शर आज़मदीन शर ॻोठ खां, आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, अब्दुल गनी अबड़ो, शाहिद लतीफ़ ऐं जिनसार ओढो जजलाज लाड़काणे खां, ऐं असदुल्ला जूणे जो, तौक़ीर अहमद अब्दुल बारी जूणे जो, ऐं नंढड़ी बेबी अबीहा जूणे जो ॻोठ ठुल जूणे खां। त सभिनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया, ऐं ख़ूबसूरत नगमो आहे नूरजहान जे आवाज़ में सभिनी दोस्तनि जे नाम।

हा जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी ऐं सारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं असां वरी हलंदासीं पंहिंजो न्यूज़ जी ब्रेक जी तरफ़ ऐं कमर्शल जी ब्रेक तरफ़ हलंदासीं वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो ऐं असां सां तव्हां पंहिंजा नाला शेयर करे सघो था फेसबुक जे आई डी ते बि ऐं SMS जे ज़रिए बि तव्हां पंहिंजा नाला 888-1 ते बि सेंड करे सघो था ऐं असांजो स्टूडियो नंबर बि आन आहे तव्हां उन ते बि कॉल करे पंहिंजा नाला लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332-1322-88

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GFM 88 की आवाज।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान ऐं कराची में रेंजर्स दहशतगर्द हमलनि खां पोइ सिक्योरिटी फोर्सिस जो वॾो ऑपरेशन। 29 दहशतगर्द मारिजी विया। पई में भारती हिमायत याफ्ता तंज़ीम जमायत अल अहरार जा 4 दहशतगर्द मारिजी विया, जिन में इंतिहाई घुर्बल दहशतगर्द कमांडर खान फरोश उर्फ ज़ाबिल बि शामिल हो। ऑपरेशन गज़ल अल हक जे सिलसिले में सरहदी इलाइक़नि पक्तिका ऐं कुनड़ में टिन अहम मर्कज़नि खे तबाह कयो वियो। कार्रवाई दौरान 25 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि जे मर्कज़नि में मौजूद वॾे मक़दार में हथियार ऐं गोला पिणु तबाह थी विया आहिनि। सिक्योरिटी अख़्तियारनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान हमेशह खिते में अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं कयूं आहिनि, पर शहरनि जे सिक्योरिटीअ ते को बि समझौतो न कयो वेंदो। दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन पूरी शिदत सां जारी रहंदो।

0: मुल्क में गैर कानूनी तौर तरछल अफगान शहरों खिलाफ बीहर क्रैकडाउन शुरू। अफगान शहरों के फौरी तौर गिरफ्तार करने जो हुक्म। घरू वजारत नोटिफिकेशन जारी कर छो। घरू वजारत मुल्क में बिना वीजा या गैर कानूनी तरछल रहंदड़ अफगान शहरों के फौरी तौर गिरफ्तार खिन वापस मोकलने बाबत आम नोटिफिकेशन जारी कर छो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383 5639
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर। राब्ते जे लाइ 0302018 0003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, एक गल तू पल्ले बन जानी, ये पल्ले बन मेरी, वो होर होणगे जिन्हां नूं तू पैरां विच रखदा है।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

कीने खां पाक हूंदी आहे। माण्हू मुरकंदे मुरकंदे बिना सिंगार जे बि ॾाढा सुंदर ऐं सुहिणा महसूसु थींदा आहिनि, ऐं मुस्कुराहट जे सिंगार जा वरी हथियार बि अहिड़ा ताक़तवर थींदा आहिनि जो हर हिकु माण्हू मोहिजी कमज़ोर थी पवंदो आहे। इहा आहे असांजी चोट खाइण खां बाद में मुस्कुराहट, ऐं मुस्कुराहट जा सिंगार, ऐं सिंगार में को हथियार कोन्हे को।

साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं गुलनि जी, त गुलनि जी मौसम बि आहे, गुल तमामु घणा सुठा ऐं सुहिणा थींदा आहिनि, जंहिंमें गुलाब जे जा गुल उन में मुख़्तलिफ़ रंग हूंदा आहिनि, ऐं राबेल जा गुल ऐं जेको आहे सो चमेली जा गुल, गुल त तमामु घणा हूंदा आहिनि पर ख़ुशबू वरी कंहिं कंहिं गुलनि में हूंदी आहे, ऐं ख़ुशबू सभिनी गुलनि में न हूंदी आहे, पर के जेके गुलनि में रंग हूंदा आहिनि त सभु हिकु जहिड़ा रंग न हूंदा आहिनि, के अणवणंदड़ हूंदा आहिनि त के वरी रंग गुलाब जे गुलनि जा या ॿियनि गुलनि जा वणंदड़ हूंदा आहिनि, तमामु सुहिणा रंग हूंदा आहिनि। जीअं ॾिसो त रंग त वरी पोपड़नि में बि हूंदा आहिनि ऐं ॿियनि पखियुनि में बि हूंदा आहिनि, ऐं अलाह साईं जी ख़िलकियल शयुनि मां तमामु जेके सुहिणियूं शयूं हूंदियूं आहिनि उहे तमामु दिलि खे वणंदड़ हूंदियूं आहिनि ऐं दिलि खे छुहींदड़ हूंदियूं आहिनि। इहे असांजे मालिक साईं जी हिकमत आहे ऐं उन जी ख़िलकत ऐं उन जी ख़िलकियल आहे, त उन ख़िलकियल मां असांखे पंहिंजो हिकिड़ो नज़ारो जेको आहे सुहिणो वणंदड़ लॻंदो आहे। जेकॾहिं तव्हां सुबुह जो सिज उभरण जो तव्हां नज़ारो ॾिसंदो त तव्हांखे तमामु वणंदड़ हूंदो, ऐं सुबुह जे वक़्तु थधे पहर में तव्हांखे उन जे गुलाब जे गुलनि जी ऐं बाग़नि जी जेका सूंहं हूंदी आहे, ॾिसो त हर वक़्तु हर मौसम में पंहिंजा पंहिंजा फल फ्रूट हूंदा आहिनि। जीअं ॾिसो त पंहिंजो हिन वक़्तु तमामु हिकिड़ी जीअं खणी असां शिती सीज़न चऊं ऐं औज चऊं हिकिड़ो विच चऊं त अंबनि जो आहे, पूरे दुनिया में पूरे पाकिस्तान में पूरे सिंध में जेका अंबनि जी सीज़न आहे तमामु सुहिणी आहे। अंबनि जा रंग ॾिसो कहिड़ा तमामु सुहिणा आहिनि, ऐं अंबनि जो जेको ज़ाइको आहे, ज़ाइको मिठाज आहे, उहो केॾो हिकिड़ो वणंदड़ आहे। उन में केतिरियूं जिन्सूं आहिनि, के उन में अंब नंढा हूंदा आहिनि, के वॾा हूंदा आहिनि, ऐं जेकॾहिं वरी ॾिसो त हिन वक़्तु असांजे मार्केट में खजूर जो जेको फ़सुलु आहे उहो लही चुको आहे, जेके असां ॾोका चऊं, ॾंग ॾोका चऊं, खारकूं, ऐं ख़ासि करे हिन जेका स्टार्टिंग वारी सीज़न आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि दिलि ते ईंदी वञे थी त लूणी खारक जेका असां उनखे हथरादो खारक बि चवंदा आहियूं, उनखे असां तेल में लूण में असां हुनखे थोरो नरम कंदा आहियूं त लूणी खारक ठही पवंदी आहे, उहा खाइण में तमामु हिकिड़ी मज़ेदार हूंदी आहे, हर माण्हू खाई सघे थो। ऐं डंग बि जेके ॾोका आहिनि उहे मार्केट में उहे बि अची चुका आहिनि, ऐं जे इंसान जे लाइ हिकिड़ी तमामु फ़ाइदेमंद आहे। पर मां वरी ॿी गुलनि जी ॻाल्हि कंदुसि, अहिड़ा गुल गुलाब जा जिन असां ॾे मैसेज कयो आहे, असांजे फ़ोन कयो आहे त असांजा नाला हलायो, अहमद नवाज़ कंबर खां भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां, फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां, रेहान खान बखर शहर खां मैसेज कयो आहे भाउ जी वॾी महिरबानी, नवीद चन्ना ॻोठु बाग चन्ना घोटकी खां, इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी, असांखे तमामु सुहिणा गुल गुलाब जा इहे ई लॻनि था जिन असांजे फ़ोन कई, उनजी वॾी महिरबानी, ऐं ख़ूबसूरत नगमो अवां दोस्तनि जे नाम।

हा जी असां माना गुलाब जा गुल महबूब शर ठरी मीरवा खां हुन सां गॾु आहे रिज़वान शर इमरान शर ऐं नंढड़ी असमा ऐं उज़मा शर दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। त समय असां वरी हलंदासीं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं ऐं कॾहिं बि न वञिजो, असां सां गॾु हुजो। तव्हां कॉल करे SMS ज़रिए ऐं तव्हां फेसबुक ज़रिए पंहिंजा नाला लिखाए सघो था ऐं असांजी मोबाइल स्टूडियो में आन आहे 0333221322।

0: सचल की सरमस्त धरती
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

साईं मुंहिंजा सुठे में सुठी ॻाल्हि ऐं मिठी ॻाल्हि ॻाल्हाइण बि हिकु क़िस्म जो सदिको आहे ऐं ॿिनि मुस्लमान भाइरनि जे विच में सुलह करण बि वॾी नेकी ऐं सवाबु आहे ऐं मिठे ऐं सुठी ॻाल्हि ॻाल्हाइण सां हर हंधि ऐं हर जॻह ते इज़त ऐं मान मिले थो ऐं साईं मुंहिंजा बाने जा बि अलाह ताला दर्जा बुलंद करे थो जेको बि पंहिंजो इंसान कंहिं सां चङाई करे थो ऐं साईं मुंहिंजा जेको बदफ़ज़ील थो ॻाल्हाईंदो आहे उहो अलाह ताला खे ॾाढो तमामु घणो गुनहगार आहे। अलाह ताला क़ुरान में फ़रमाए थो त माण्हुनि सां मिठो ॻाल्हायो ऐं ॿियनि खे सताइण वारो माण्हू चवंदा आहिनि त गुनहगार आहे ऐं भल त हू समूरियूं रातियूं इबादत करे पर असांखे घुरिजे त असां नंढनि सां प्यारु कयूं ऐं वॾनि जी इज़त कयूं मिठी ऐं सुठी ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं सुठी नसीहत कयूं उहा बहितर आहे। कंहिं सां बि दिलि रंजाईंदड़ ऐं ॾुखोईंदड़ ॻाल्हि न कयूं कंहिंखे असां तकलीफ़ न ॾियूं कंहिंखे परेशान न कयूं इहो ई असांजी असुलु इबादत आहे ऐं हिन में रब राज़ी आहे।

जी हसमिन प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा ऐं आख़िरी लम्हनि में कुझु दोस्तनि जा नाला वंदी पहुचाईंदा हलंदासीं। मोहम्मद ख़ान कुंभार, वफ़ा जमालद्दीन कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार, हाले पोटा स्टॉप लॻे झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, ऐं यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, रिज़वान अली कलोड़ो ऐं माजिद जतोई, महरम अली भुरगड़ी, ग़ुलाम अली भुरगड़ी ऐं अली मुराद भुरगड़ी, ॻोठु करम ख़ान भुरगड़ी तालुको सजावल खां, ऐं तालुके सजावल जे ॻोठु पीर गुलशाह खां, नादर अली खजड़, लियाकत अली खजड़ ऐं गाज़ी ख़ान खजड़, ऐं अलीरिनो जामरी, रईस मुश्ताक जामरी ॻोठु यारमंद जामरी खां, ऐं अब्दुल गफ़ार मेंगल बिरोही ऐं सलेमान वधो ॻोठु शाह जिले खां। भाइरनि जी वॾी महिरबानी, लख कुर्बानी।

सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसीए सीएसएस 2024 जे पेपर जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हुओ।

खैरपुर जे कच्छ में कोराई बिरादरी जी बिंदुरनि में छेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी। फुलो थाने जे हद ॻोठ कोराई में कोराई बिरादरी जी बिंदुरनि में मामूली ॻाल्हि तां छेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन कोराई मारिजी वियो। करावर ऐं मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी थिया। धुरनि में छिकताण वधी वई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94। अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरीके कार्ड से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, SPACE मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, डैड इज GFM 88 के पेज के ऊपर पोस्ट मिलती है आपको जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300111348. इसके ऊपर कॉल की जा सकती है. तो

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: हेलो,
1: ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही. ओके जी, एक और ट्राई करेंगे और ये देखेंगे आवाज क्यों नहीं आ रही. हेलो,
2: ठीक है ठीक है,
1: आवाज आ रही है?
2: हाँ ठीक है.
1: ओके, कौन बात कर रही है?
2: अभी तक नहीं
1: पहचाना. मैं पहचानूंगी ना, आप बताएंगी तो मैं पहचान जाऊंगी.
2: अच्छा,
1: कौन बात कर रही है? सॉरी, दुआ कवल बात कर रही है. दुआ कवल, अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है.
2: अच्छा होगा.
1: अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रही है?
2: हाँ.
1: गाना सुनाएंगी? हेलो, गाना सुनाएंगी? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है. और ये क्यों हो रहा है?

0: ओके जी एक और ट्राई करेंगे. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: जी. कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? हेलो कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? हेलो वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? मेरी आवाज नहीं आ रही है, लगता है फिर ये कोई इशू है हमारे पास. एक और ट्राई करेंगे जी. हेलो वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं? ओके जी मुझे बताएं कि अदा प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे?
1: हाँ जी बताएंगे, गाना सुनाएंगे. बिल्कुल
0: सुना दें. अदा स्टॉप स्टॉप. अगर सारा आप सुना देंगे तो मैं प्ले क्या करूंगी, मुझे बताएं इसका टाइटल क्या है. ओके चले मैं इसको सर्च करती हूँ जी. थैंक यू सो मच. और कुछ कहेंगे? ओके जी थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.

0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक है. और सुलगाओ गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट है जिसमें आप लोगों की हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं 03000113488 इसके ऊपर. और चेक करते हैं जी नेक्स्ट कॉलर. और इस बार चेक करते हैं कि हमारी आवाज चली जाए. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है?
1: आपकी आवाज बहुत कम आ रही है.
0: मेरी आवाज बहुत कम आ रही है? अच्छा, ये
1: बात
0: चले. अब ठीक आ रही है? अब बेहतर है? अब बेहतर आ रही है?
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है.
0: कट कट के आ रही है? आ तो रही है ना. आ रही है वैसे, आवाज आ रही है आपको मेरी?
1: आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही आती.
0: चले फिर गाना ही सुना दे हमें. हम गाना प्ले करते हैं और ये चेक करते हैं हमारे पास क्या कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है. गाना सुनाएंगे?
1: हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: गाना सुनाएंगे कोई?
1: जी जी मैं सुन रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है.
0: अच्छा, तो कोई गाना सुनाएंगे? चले, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज.

0: जी साथ साथ नेक्स्ट कॉलर को पिक करते हैं और चेक करते हैं कि कौन और कहां से हमारे साथ मौजूद है. हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी
1: वालेकुम सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है. एक और ट्राई करेंगे. 03000113488. हेलो
2: हेलो
0: हेलो. ओके जी.

0: MacBook Club.
1: मुख्यमंत्री यादाश्त टेक्निकल सतह जो गालियों में जारी आहिन। ईरान जो अमेरिका इसराइल ते मुफाहमती यादाश्त की भनेकड़ी करण जो इल्ज़ाम ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमेरिका इसराइल मुफाहमती यादाश्त की पहिरीं शिकर की भनेकड़ी करे रहिया आहिनि जंहिं सबब खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। मुआदे ते नेक नीति सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। तहरान मुआदे ते मुकमल अमल दरामद चाहे थो। मुआदे जी भनेकड़ी ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फ़ैसिला था क़दम खया वेंदा। कराची जे कारोबारी मर्कज़ गुल प्लाज़ा खे लॻल बाहि हादसो करार पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वटि जमा कराए छॾियो। गुल प्लाज़ा बाबति अदालती जांच रिपोर्ट खे चालान जो हिसो न बणायो वियो। दुकानदार नेमतुल्ला ऐं संदसि 11 सालनि जे पुट हुज़ैफा खे जवाबदार तौरु नामज़द कयो वियो। गुल प्लाज़ा कमेटी जे सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस में नामज़द कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिबि गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण सबबि 72 माण्हू सड़ी फौत थिया। हिन वक़्त ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल न आहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे CCE 2024 जे पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। कैरपुर जे कच्छ में कोराई बिरादरी जी बिंदुरुनि में झेड़ो, 1 ॼणो क़त्ल, 2 ज़ख़्मी। होलो थाने जी हद ॻोठ कोराई में कोराई बिरादरी जी बिंदुरुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन कोराई मारिजी वियो। करावर ऐं मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी थिया। धुरियुनि में छिकताण वधी वई। सकरण वेझो ॿ ॾींहं अॻु सिंधु दरिया में टिकटॉक ठाहींदे ॿुॾी वियल नौजवान फ़हीम जुणे जो लाश थिए। ॻोठ दंगवासी नौजवान फ़हीम जुणे जो टिकटॉक वीडियो ठाहींदे दरिया में ॿुॾी वियो हो। कोटली भरिसां सिंधु दरिया मां अधूरो शख़्स जो लाश थिए इस्पताल मुंतकिल। सुञाणप न थी सघी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में हिकु औरत समेत 4 ॼणा फौत। कंबट में क़ौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर। नारी फिज़ा ख़ास खे हयाती विञाए वेठी। अलाया ज़ख़्मी थियो। कश्मीर में कायरा टुटण सबब मज़दा VS फीडर में किरी पई। ड्राइवर अली हसन उगाई फौत। कराची जे बल्दिया वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार गाॾीअ जो मोटरसाइकिल खे टकर। 2 ॼणा फौत। लाश इस्पताल मुंतकिल। फौतुनि जी सुञाणप न थी सघी। शाहपुर दाखर में घर में दाख़िल थी फुलुट कंदड़ 4 औरतूं पकड़िजी पयूं। पुलिस हवाले न्यू कॉलोनी में 4 औरतुनि मलिक अज़ीज़ जे घर में घिरी पीसन औरत खे जगमाल बणाए वरितो। औरतूं सोना ज़ेवर ऐं रोक रक़म खणी फरार थियण लॻियूं त औरत जी रड़ियुनि ते ॿिए कमरे में सुतल मर्द जाॻी पिया। औरतुनि खे पकड़े पुलिस हवाले कयो वियो। केस दाख़िल। कुंडी में लंघ बंदि करण तां बिंदुरुनि में झेड़ो। भील बिरादरी जो एहतजाज। भील बिरादरी कुंडी उमरकोट रोड ते धरणो हुयो ऐं लंघ खोलण जो मुतालबो कयो। मंज़ूराबाद वेझो शहज़ोर गाॾीअ खे बाहि लॻी वई। गाॾी सड़ी रख। ड्राइवर महफ़ूज़ रहियो। खाणोट वठे इंडस हाईवे ते रोड ते कलर जा पटा कढ़ंदड़ शहज़ोर गाॾी खे ओचितो बाहि लॻी। बाहि लॻण खां पोइ गाॾी जा गैस सिलेंडर बि फाटी पिया। बाहि सबबि शहज़ोर गाॾी मुकमल तौर सड़ी रख थी वई। ऐं यूरोप में गर्मीअ में फोतुनि जो अंगु 1300 खां वधी वियो। WHO वधीक फोतगिन जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। सिहत जे आलमी इदारे WHO मूजिबि यूरोप में गैरमामूली गर्मीअ सबबि फोतगिन जो अंगु 1300 खां वधी वियो आहे, जंहिं में वधीक वाधि थी सघे थी। यूरोप धरतीअ ते तेज़ीअ सां गरम थींदड़ ख़ितो आहे।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-8359।
3: अदा
4: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
5: ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
4: ये सांस में डूबा हूँ जैसे पानी में मुझे शोर नहीं चाहिए गहराइयों में जाने दे अब मुझ पे जो गुजर रही

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. हमारा अगला सेगमेंट है जी बोलो तो माने. और बोलो तो माने में आप लोग टंग ट्विस्टर कह के दिखाएंगे कि लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. ठीक है, ये कहेंगे लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. और इसको कह के दिखाएंगे. और जब आप ये कहेंगे ना तो आप जीनियस कहलाएंगे. जो बंदा अच्छा अच्छा बोलना जानता हो और अच्छा अच्छा कहता हो तो डेफिनेटली मतलब वो विन कर जाएगा इस सेगमेंट को.

0: एक और कॉलर लेते हैं जी, और नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. दुआ कबूल
1: जी.
0: टंग ट्विस्टर सुना भूलेंगी?
1: हाँ बोलूंगी, लेकिन फिर भी आपकी आवाज बहुत ठीक नहीं आ रही.
0: अच्छा तो मैं बताऊँ भूलूंगी?
1: नहीं, मुझे याद ही बता दूंगा आपको.
0: अच्छा, आपने कहना है लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च.
1: लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल
0: yes.
1: लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च. लाल लाल हरी मिर्च, मिर्च शिमला मोटी मिर्च.
0: ओके ओके, वेरी नाइस. अच्छा, दुआ कबूल. दुआ कबूल मुझे ये बताएं, और कुछ कहेंगी? और कुछ कहेंगी?
1: हाँ, गाना लगता है नहीं मेरा.
0: कौन सा गाना सुनना है आपने?
1: मेरी कॉल लगी तो गाना भी लगेगा.
0: कॉल लगी तो गाना भी लगेगा. चले लगा देते हैं जी. और वैसे मैंने काफ़ी लोगों के गाने प्ले करने थे, वो हमारा कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से ना ये गाना हम प्ले नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे. सादगी तो हमारी जरा देखिए. ओके, अभी चलाते हैं जी, चलाते हैं थोड़ा सा हौसला. थैंक यू, बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह.

0: Comunista.
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: है ना, औलाद को अपनी फरमा बरदारी दिखानी चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए और टाइम जाया नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बस रब पाक हर किसी को अपना मोहताज रखे, किसी को दूसरे का मोहताज ना रखे।
1: चले बहुत जबरदस्त बात, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना है?
0: मैम गाने का सेगमेंट खत्म हो गया।
1: गाने का सेगमेंट खत्म हो गया।
0: थैंक यू शेख साहब।
1: हाँ अब तो प्रोग्राम ही खत्म होने वाला है।
0: बस भाई मेला खत्म हो गया, मैं आखिरी में जो है पंडित
1: मेला खत्म हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच।
0: खत्म हो गया, मैं आखिरी में पहुंचा झाड़ू लगाने के लिए।
1: बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने अच्छी बात बता दी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये थे कॉलर और मैं कोशिश करूंगी कि एक और कॉलर लूं और फिर उसके बाद एक और कॉलर लूं। अच्छा नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे जी, कॉलर कहाँ से। हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है, नहीं करनी बात।

0: ओके जी, एक और कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: नेदर रुखसार, आवाज आ रही है?
0: जी जी, बिल्कुल आ रही है. आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: तेरी आवाज मेरे तक नहीं पहुँच रही है मैडम रुखसार.
0: अच्छा, पहुँच नहीं रही है? अब तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगी. थैंक यू. 03000113488. ओके जी, नेक्स्ट कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मिसेस अली लास्ट लकी कॉलर हैं. आज की अच्छी बात बता दें जल्दी से.
2: आज की अच्छी बात ये है कि हर इंसान को चाहिए कि किसी मजदूर की मदद करें, ताकि अगर हम किसी मजदूर की मदद करेंगे तो वो हमें दुआ देंगे, तो हमारी नेकी का बायस बनेगी.
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त.
2: आप ठीक है मेरी जान?
0: हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह. थैंक यू सो मच मिसेस अली. और कुछ कहना है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज. ये थी लास्ट लकी कॉलर. और फाइनली आज का जो टंग ट्विस्टर बोला है, अच्छा अच्छा, वो बोला है जी दुआ कवल ने. दुआ कवल आई, टंग ट्विस्टर बोला और छा गई. वैसे मेरे ख्याल से वकार भाई ने भी तो टंग ट्विस्टर बोला था. आज मैं पता नहीं क्यों चीजें भूल रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वकार भाई ने भी टंग ट्विस्टर बोला था. तो अगर बोला था तो बहुत अच्छा बोला था. और लास्ट में प्ले किया है आरजू.

ईरान ऐं अमेरिका जा हिक ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़। अमेरिकी मीडिया जी दावा, अमेरिकी मीडिया मुजिबि तहरान हिक ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीति ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो वहिंवार आप लाइ हरमोस हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परे वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल वाइदे जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबबि खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। वाइदे ते नेक नीतीअ सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। वाइदे जी भञकड़ी ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फैसलाइता कदम खया वेंदा। आबदा हरमुज बाबति ईरान ऐं ओमान पारां ठहियल कमेटी जो पहिरियों इजलास, आबदा हरमुज बाबति गॾियल मुशावरत सां फैसला करण ते इतफ़ाक़। ईरानी नायब परदेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो त ॻाल्हियुनि दौरान आबदा हरमुज में बहरी आमद रफ़्त ऐं मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं।

पंहिंजी हदुनि में रहो, तेहरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो। ईरान जी बहरीन खे धमकी। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामराई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदुनि में रहनि, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾनि, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कनि।

सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज, सिजावल जुड़े जो मीरपुर बछोरो में धरना, सिजावल जुड़े जो मेहारन आबादगार फुजदार रोड से धरनो हो, मीरपुर बठोरो में आबादगार सिजावल रोड से धरनो हो। आबादगारन चवण है सारे फसल की मुंद है पर पानी अणलब है, नोटिस वी पानी फराहम किया वे।

0: हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन में मुबैना बेज़ाबते के खिलाफ उम्मीदवारों जो ॿारनि शागिर्दनि मुज़ाहिरे बाद अलामा दाऊद पोटो लाइब्रेरी वटि धरणो बि हयो। एहतिजाज में उम्मीदवारनि सां गॾु सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी तंज़ीम बि शिरकत कई। मेरिट जी लताड़ बंदि करण जो मुतालबो। लाड़काणो में चार ॾींहं अॻु राइस कैनाल में ॿुॾी वियल नौजवान जो लाश न मिलियो। वारसनि जो धरणो। लोहर कॉलोनी वासी नौजवान मुज़म्मर शेख जे वारसनि औरतुनि समेत रसूलाबाद रोड ते धरणो हयो। नौजवान जे भाउ वहीद शेख जो चवण आहे त चार ॾींहं गुज़री विया आहिनि, रेस्क्यू अमलो भाउ जो लाश हथ न करे सघियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में हिकु औरत समेत चार ॼणा फौत। गंबट में क़ौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर। नारी फिज़ा ख़ासि खे हयाती विञाए वेठी, अलाया ज़ख़्मी थी पियो। कश्मीर में टायराड टुटण सबब मज़दा बीएस फीडर में किरी पई। ड्राइवर अली हसन उगाई फौत। कराची जे बल्दिया वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार गाॾीअ जो मोटरसाइकिल खे टकर। पीउ ऐं पुट फौत थी विया। फौतनि जी सुञाणप अब्दुल मजीद ऐं संदसि पुट अब्दुल जब्बार जे नालनि सां कई वई। शाहपुर चाकर में घर में दाख़िल थी फुलुट कंदड़ चार औरतूं पकड़िजी पयूं। पुलिस हवाले। न्यू कॉलोनी में चइनि औरतुनि मलिक अज़ीज़ जे घर में घिड़ी पीसनि औरत खे अरगुमाल बणाए वरितो। औरतूं सोना ज़ेवर ऐं रोक रक़म खणी फरार थियण लॻियूं त औरत जी रॾियुनि ते ॿिए कमरे में सुतल मर्द जाॻी पिया। औरतुनि खे पकड़े पुलिस हवाले कयो वियो। केस दाख़िल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8569।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-1800-003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: ओबीडी प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं. शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं. आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या तरीके कार हैं जिन्हें फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे. लेकिन आज के प्रोग्राम में टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है वो तो बता देना. तो बिल्कुल जी, आज के अगर सवाल की बात की जाए तो आज आप मुझे ये बताएंगे या ऐसा कह लें कि आप मुझसे पूछेंगे या फिर मुझे कहेंगे. तो आज टॉपिक कुछ यूं होने वाला है कि आपने ना अगर सिर्फ एक मशवरा देना हो मुझे तो क्या ऐसा मशवरा है जो कि आप मुझे देना चाहेंगे. बहुत सारे ऐसे मशवरे होते हैं जो कि हम लोगों को दे रहे होते हैं, मुफ्त में दे रहे होते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं होते मशवरे के. लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक ना आदत होती है, वो बस बिला वजह लोगों को मशवरे देते रहते हैं. तो आज आप ऐसा करेंगे कि आज आप मुझे एक ऐसा मशवरा देंगे जो कि आप लोगों को लगता है इस मशवरे की ना सिद्धरा को बड़ी जरूरत है. तो बताइए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं. अगर आप शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. और अगर आप हमें फेसबुक पर सुनने वाले लोग हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, फेसबुक पर शामिल होते हैं, तो आज थोड़ा सा उनके लिए ऐसा है कि बैड न्यूज है क्योंकि आज फेसबुक पर जो पोस्ट है वो जरा अपलोड नहीं हो सकी थी, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है जिस वजह से. तो आप ऐसा कीजिए, हमें पैनल पर मैसेज कीजिए और इसके साथ साथ मैं कॉल्स तो वैसे ही लूंगी आप लोगों की, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक हो गया. तो इस तरीके कार को फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम की रौनकों को मजीद बढ़ा सकते हैं. तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जो कि आप लोगों के लिए है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप खूबसूरतियां हासिल कर रहे हैं. और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी कर रहा है. और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि हर तरह के प्रोडक्ट्स. अब मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आप लोगों के साथ, तो एक ऐसी बात भी है कि आप लोगों में से बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, सुने हैं, या फिर बहुत से लोगों की ये आदत होती है ना, वो ये कहते हैं कि भाई हम फला प्रोडक्ट नहीं लगाते, हमारे लिए ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए तभी हम इस्तेमाल करेंगे. कुछ लोग साबुन नहीं लगाते, कुछ लोग फेस वॉश नहीं लगाते, कुछ लोग नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं, कुछ लोग फेयरनेस क्रीम लगाने वाले हैं, कुछ लोग एक्ने की वजह से परेशान है. तो हर तरह का प्रोडक्ट भाई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है. बस आप हुक्म कीजिए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं बताऊंगी कि वो प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के ऊपर ना किस तरह से काम करेगा और किस तरह आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेगा. तो खूबसूरत रहेंगे, खूबसूरतियां हासिल करेंगे और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहेंगे. और साथ ही साथ शामिल प्रोग्राम होते जाइए और मुझे बताइए अगर एक मशवरा आप मुझे देना चाहें, एक मशवरा मुफ्त वाला मशवरा, तो ऐसा कौन सा मशवरा होगा जो कि आप लोगों को लगता है कि इस मशवरे की सिद्धरा को जरूरत है. हाँ जी, वैसे तो मशवरों की जरूरत होती है हर एक इंसान को, लेकिन मशवरा जो है वो जरा काम का और ढंग का होना चाहिए. तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप हमें ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल जी आपके मैसेजेस, आपकी प्यारी प्यारी बातें जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं. ओके जी, सो इस प्रोग्राम में यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं 8881 पर और आपकी कॉल्स भी, लाइव कॉल्स भी बिल्कुल जी प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली है. तो बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और लाइव कॉलिंग नंबर जो है वो मैं आप लोगों को जो है ना वो 2 बजे के बाद बताऊंगी, क्योंकि कॉल जो है वो 2 बजे के बाद ही ली जाएंगे. तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सिद्धरा आप कैसी हैं और हाउ आर यू, हम सारा काम छोड़कर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है बाजी, हम आपकी खातिर नींद को छोड़ते हैं लेकिन आपको नहीं छोड़ते, हमें शीरा कुल का गाना सुनाइए दिल तो खे नहीं छड़ी चाह याद करने थोड़ो हो जाए. बिल्कुल जी, वो गानो तव्हां खे ॿुधाईंदासीं, प्यारा भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, तव्हां निंड खे जेको आहे साइड ते रखी करे तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, अहिड़ा प्यारा प्यारा मैसेज कंदा आहियो, पोइ सचम भला लॻंदा आहियो. ओके जी, सो तव्हां अगरि मूंखे को मशवरो ॾियणु चाहियो त कहिड़ो मशवरो आहे जेको तव्हांखे लॻे थो त हीउ मशवरो सिद्धरा खे ॾियणु घुरिजे. अच्छा, फहद डेरी हमारे साथ हैं और ये सऊद डेरी हैं, फ्राम नवाब शाह कहते हैं मौला सलामत अदी शो तव्हांजो बहितरीन आहे, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहे, ऐं हिकु मैसेज खे तव्हां ॿ दफ़ा शेयर करे छॾियो आहे उन जे लाइ बि मोहबतूं, वरी टियों दफ़ो बि तव्हांजो मैसेज अची वियो आहे सेम, सो उन जे लाइ बि मोहबतूं. मायरा असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई, मायरा तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम में अगरि तव्हां सां सां गॾु मौजूदु आहे त असांखे ॿुधाईंदा हलो, पैनल ते तव्हां मैसेज कंदा ऐं तव्हां कॉल्स कंदा. अॼु कॉमेंट्स वारो थोरो जेको सिस्टम आहे न उहो थोरो ऑफ आहे, छो त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे टेक्निकल इशूज़ बि अची वेंदा आहिनि ऐं इहे टेक्निकल इशूज़ बि असांजी ज़िंदगी जो हिसो आहिनि, सो का ॻाल्हि कोन्हे का. اوکے جی, مزے کرتے ہیں پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ, اور یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جانے لگے ہیں. شارٹ کمرشل بریک ہمارے پاس آ چکے ہیں, اس کے بعد ہم جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے تین بجے تک. آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے, خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.
1: FM 88 Network, سندھ کی آواز.
2: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ, جو دے آپ کو خوبصورتی کا حقیقی احساس.
3: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3 85-569 0300-3-8569

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं CFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराबपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आए हाय क्या बात है, दोनों ही प्रोडक्ट्स का अगर जिक्र किया जाए तो भाई दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अगर मान ले ये बात कि हम अगर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं तो ये बात आप लोगों को जरा वाजे करते चलें कि अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिलने वाला है। और हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है, नो नेवर। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो क्वालिटी में आए हाय इतने जबरदस्त तरीके से इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। हर तरह से नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं और हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखा गया है, आपके खूबसूरती का ख्याल रखा गया है। तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को पहले मैंने बताया कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए वाइट एज ब्यूटी सोप अवेलेबल है, वाइट एज फेस वॉश अवेलेबल है, वाइट एज लवली क्रीम अवेलेबल है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब अवेलेबल है एंड वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है। उसके अलावा वाइट एज का लोशन भी मौजूद है एंड वाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स तो आप लोग इजीली से ना वो परचेज कर सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर, और वहां से जाकर जब आप परचेज करेंगे तो उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। एक और मजे की बात बताते चलो कि अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि ये बन रहा है कि आपके करीबी जनरल स्टोर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद है जिसके ऊपर आप रापता करेंगे, कॉल करेंगे प्रॉपर, या फिर आप एक छोटा सा मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके एरिया में नहीं मिल रहे हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि वो अवेलेबल करा सके। उन्हें अपना जो है ना वो एरिया बताइएगा, आप प्रोग्राम सुनते हैं और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं ये उन्हें बताइएगा। अगर आप कॉल करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है तो आप एक छोटा सा मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो नंबर है जनाब 03 1575 9905। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा और आपको जो है ना वो रिस्पांस मिलेगा, अच्छे से रिस्पांस मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि सिद्रा ये तो बताएं कि इस्तेमाल करें तो क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये हमें सारी चीजें जो ना वो मिलेगी। तो एक और मजे की बात है कि जब आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगी बल्कि आपकी खूबसूरती को मेंटेन भी रखेगी। वो ऐसे क्योंकि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और मिल्क मौजूद है। जैसे ही आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन को गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसान और असरात से आपकी स्किन को पाक रखती है, झुर्रियां हो, दाग धब्बे हो, इन सब चीजों को खत्म करती है। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई ना मजे की बात। बिल्कुल जी, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, मर्द हज़रात और ख्वातीनों हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद आपको मिलेगा ऐसा खूबसूरत सा निखार जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। उसके साथ साथ अगर आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन साथ में आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ और आप मत इस्तेमाल कीजिएगा, आप लगाइएगा वाइट एज ब्यूटी सोप। अगर आप ऐसा सीन है कि कोई भी क्रीम नहीं लगाते हैं, आप थोड़ा सा क्रीमों से दूर भागते हैं, तो आप वाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि साबुन तो हर किसी की एक बेसिक सी नीड होती है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वाइट एज ब्यूटी सोप का आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। और उसके अलावा अगर आप सोप नहीं लगाते या फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं तो भाई जान आपके पास मौजूद है वाइट एज का विटामिन सी फेस वॉश जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, आपकी स्किन ग्लो में आ जाती है और इतना क्रीमी फेस वॉश है ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितनी अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साबुन भी अवेलेबल है, फेस वॉश भी अवेलेबल है, जो चीज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। इसी के साथ साथ अगर आप एक्नी को लेकर परेशान है, तव्हांजे चेहरे ते दाणा ॾाढा अची विया आहिनि, दाणा तव्हांखे नथा छॾनि, तो बाबा उन्हें चलाए तवान चलाए मौजूद है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ही नालो तवान याद रख जो इन नाले की अगर तवान याद रखना तो तवान पांजे चेहरे जाचे की एक्नी ना उन्हें के खत्म करने चलाए सफा आसान फार्मूलो आए। सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आए जो आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार थियल है, जिनके अंदर ना फुल जड़ी बूटियों एड थियल आए। अगर तवान यो सोचो था तो केमिकल कोई भी इनमें एड थियल हों तो ना बाबा, सब जड़ी बूटियों इनमें एड थियल आए। ट्री ट्री ऑयल है, एलोवेरा है, मिंट है, उनके अलावा नीम है,
आहे खोड़ अड़ा सारा इन जे अंदर चीजों एड कई वयो आहे जेके तवा जे स्किन जे दाणा हुजन या फिर दाणा जा निशान हुजन या वरी तवा जे स्किन ते ब्लैक हेड्स आहिन वाइट हेड्स आहिन एक्नी पोर्स आहिन या वरी एक्स्ट्रा ऑयल आहिन उन सबनी चीजों के खत्म करे तवा जे स्किन के क्लियर बनाइंदो आई तवा जे स्किन के खूबसूरत बनाइंदो सो ही आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेके तवा राजे टाइम इस्तेमाल करे सको था यानी कि सुम्मण खा पेरा तवा छा कंदा पंजो फेस वॉश कंदा वाइटिश साबुन लगायो या फेस वॉश लगायो अच्छे तरीके से पंजो फेस वॉश कयो क्लीन कयो उन खा पोई डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको पंजे स्किन ते अप्लाई कयो तवा जे चेहरे जा दाणा हुजन निशानात हुजन या फिर कोई धक जो निशान आ कोई सड़न जो निशान आ ई भी अगर निशान तवा जे चेहरे ते मौजूद आ उई भी खत्म थी वेंदा एंड डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तवा जे स्किन के सफा क्लियर बनाइंदो खूबसूरत बनाइंदो एंड शाइनी बनाइंदो उन खा अलावा

एतिरो ज़बरदस्त फार्मूलो आहे की तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कंदा तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त वाक़ई तव्हांजे हथ केॾो भलो प्रोडक्ट अची वियो आहे। ऐं तव्हां ज़रूरु हिन खे ट्राए करे ॾिसजो। जेके माण्हू क्रीमूं न बि लॻाईंदा आहिनि त हू जॾहिं वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसंदा तॾहिं तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो त वाक़ई बाबा हीउ उहो प्रोडक्ट आहे जेको हर हिकु इंसान जे लाइ ज़रूरी आहे, हर हिकु इंसान खे इस्तेमालु करणु घुरिजे। सो तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसजो। ऐं हिन खे इस्तेमालु तव्हां ॾींहं जो करे सघो था, राति जो करे सघो था, जंहिंमहिल वणेव तंहिंमहिल कयो। बसि लॻाइण पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो, ठीकु आहे। सो ही उहे प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांजी स्किन मुताबिक़ तयारु थियल आहिनि। तव्हांजी स्किन कहिड़ी बि आहे तव्हां ईज़ीली पंहिंजी स्किन जे मथां इस्तेमालु करे सघो था। ऐं सभ खां मज़ेदार ॻाल्हि त तव्हांजी स्किन खे कोई नुक़सान न ॾींदी ऐं तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ ई तयारु थियल आहिनि। अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइणु चाहियो था देन तव्हांखे डायल करणो आहे 03-15-799-0595। ही नंबर डायल कयो, कॉल कयो या मैसेज कयो हुननि खे, ॾिसो त बाबा तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हांजे एरिया में कोन था मिलनि, जीअं हू अवेलेबल कराए सघनि। अच्छा, अॼु प्रोग्राम जो टॉपिक इहो आहे, तव्हांखे का हिकिड़ी सलाह मशिरो नसीहत ॾियणी आहे जेका तव्हां मूंखे अगरि ॾियणु चाहियो था। तव्हांखे कॾहिं ईअं किथे थियो हुजे, तव्हांखे लॻंदो हुजे त बाबा हीउ जेको मशिरो आहे इहो सिदरा खे ॾियणु घुरिजे, त अगरि तव्हां उहो ॾियणु चाहियो था त तव्हां मूंखे ॾियो, मां बि ॾिसां कहिड़ा मशिरा जेके तव्हां मूंखे ॾियणु चाहियो।

क्या बात है, आपके मैसेजेस हैं, जल्दी से आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की कॉल्स भी पिक करनी है मैंने। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम चंदा, कैसी हो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं स्वीटी, आप कैसी हैं? हमारी निदा अली हमारे साथ मौजूद और कहती हैं, फॉर यू मैं और तुम जिस दिन मिलेंगे वो दिन वक्त की पेशानी पर चमकता हुआ एक रोशन सितारा होगा, वो लम्हा जब तुम सामने होगी और मैं अपने सब लफ्ज भूल जाऊंगी, दिल की धड़कन ही मेरा तावन दिन जाएगी, तारुफ बन जाएगी और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी दुनिया, वो दिन उस सदी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और कहती तुम्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, बिल्कुल अच्छी हो चंदा जाने, समझ गई ना? बिल्कुल मैं समझ गई। और अलीजा भी आके साथ हमारा शो सुन रही है, तो अलीजा को भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। दोनों परियों का आप हमारे प्रोग्राम की रौनकें हैं जी, तो खुश आमदीद। अच्छा, ठूफ टूसल से मुलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते सिडो जी कैसी हैं आप, उम्मीद के मेरी तरह ओके एकदम झकास होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम झकास से लस्सी का गिलास।

ओके जी, हमारे साथ मौजूद है साइमा मीर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मक्खन जैसी आरजे सिद्रो, आप कैसी हैं? सेहत तबीयत कैसी है? शो मस्त बेस्ट है। सलाम अम्मी जान और वरियाम भाई को। ओके जी, ओके। और इरम हमारे साथ कहती है, ओ मेरी दिलबर दोस्त, मैं आपका रोजाना शो सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं आजकल आपको SMS करने में थोड़ी सुस्त हो गई हूँ। कोई बात नहीं, बस बता दिया करें कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और साइमा मीर कहती है, टॉपिक आरजे। ओके, कहती हैं आरजे हो तो जस्ट आरजे ही रहना, कहीं और ना जाना। जी मैं भी ऐसा सोच रही हूँ। हाँ मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन जो चीजें हम चाहते हैं तो वो शायद हो नहीं पाती है जिंदगी के अंदर। तो बस जो अल्लाह पाक ने लिखा होगा नसीब में वो हो जाएगा सब कुछ, और बस हम कोशिश करने वाले इंसान हैं और हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये इमरान भाई कहते हैं कि सारी उम्र रखा है भरम बेफेज रिश्तों का, सच पूछो तो अपने सिवा कोई भी अपना नहीं होता। ओ या गाल का यही ना।

ओके जी, सो बिल्कुल जी बहुत ही प्यारा गाना आप यहाँ पर एंजॉय करें, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। यार कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप हमें 888-1 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और आज आप कोई सा भी मशवरा जो कि आप मुझे देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपकी कॉल्स हम पिक करेंगे। न्यूज ब्रेक आने वाली है, उसके बाद जैसे ही हम दोबारा आप लोगों के साथ मुखातिब होने वाले हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल्स होंगी और आप लोगों के साथ साथ कॉल पर चिटचैट होने वाली है। तो आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332-1322-88। अच्छा निदा, मैं बताती हूँ तुम्हें, बताती हूँ, सब्र करो जरा। अच्छा मेरी ये आदत है ना कि मैं बार बार कहती हूँ कि पोस्ट को लाइक और शेयर करो, ये मैंने इतनी दफा ना कंट्रोल किया है कि मैं मतलब बोलने ही वाली हूँ, बोलने ही वाली हूँ कि भाई पोस्ट को लाइक और शेयर करें। हम रोजाना अगर जो भी चीजें बोल रहे होते ना तो ऐसे बस मैं बोल देती हूँ, तो आज भी मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, कोशिश की कंट्रोल की, लेकिन ये हो गया मुझसे कि मैं बोल ही गई कि भाई पोस्ट को लाइक और शेयर। चलिए आप ऐसा करें कि आप नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, नंबर है 03-15-799-0595। नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, उन्हें बताइए कि आप जो है वो परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एश के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके एरिया में नहीं मिल रहे, और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जल्दी से अवेलेबल कराइए। न्यूज ब्रेक आ रही है, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगी, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी 3 बजे तक।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, वधीक आसान स्नान।
2: क़बूल न कंदो आबदा हरमुज़ बाबति ईरान ऐं ओमान पारां ठहियल कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। आबदा हरमुज़ बाबति गॾियल मुशावरत सां फ़ैसिला करण ते इतफ़ाक़। ईरानी नायब परदेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी ईरानी वफ़द जी क़यादत कई। ओमान जो नायब परदेही वज़ीर वफ़द सां गॾु ॻाल्हियुनि में शरीक थियो। काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त गॾजाणीअ में इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश नामे तहत सामूंडी रियासतनि जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं हक़नि जी रोशनीअ में आबदा हरमुज़ जे मुस्तक़बिल ऐं इंतिज़ाम बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरान ऐं अमेरिका जो हिक ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़। अमेरिकी मीडिया जी दावा, अमेरिकी मीडिया मूजिब तहरान हिक ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीति ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिं जो महवर आबदा हरमुज़ हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल माहिदे जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबबि ख़िते में अमन ऐं इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। معاہدے تے نیک نیتی سے عمل درآمد جا خواہشمند آہوں۔ معاہدے کی بھنکڑی تے بی دھر خلاف فیصلہ تا قدم کھایا ویندا۔
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں۔
3: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی۔
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000۔
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 03005569

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास, और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है. ओके जी, मेरे साथ कौन कौन है और कहाँ कहाँ से आप हमारे साथ मौजूद हैं मुझे बताते जा रहे हैं. शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और प्रोग्राम की रौनकों को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं. और जनाब हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में. जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. हाँ जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसका नाम है व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अच्छी बात तो ये है जनाब कि जो आप लोगों को इस प्रोग्राम में प्रोडक्ट बताए जाते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को, आपकी स्किन को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की, आपकी स्किन की हिफाजत भी करते हैं. तो अगर आप लोगों को बताया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि आप लोगों को मैं जरा सा बताऊं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स मौजूद है एंड माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन से तैयार किया गया है. बिल्कुल जी, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बेहतर से बेहतर बनाने का काम करता है. अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को बताते चले कि सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा वाला रिजल्ट देती है, और सिर्फ दो दिनों में आप जो है ना वाज़े नताइज के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाइटनिंग नाइट क्रीम है. यानी कि नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम कोलिक एसिड और ग्लूटाथायोन से भरपूर ये क्रीम रात भर जो है ना आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काम करती है, ताकि आपकी जिल्द जो है वो चमकदार रहे, डार्क स्पॉट्स वो खत्म हो जाएं, हाइपर पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाए, और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए, और उसके साथ साथ आपकी जिल्द को जो है ना गहराई से मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है डी स्किन ब्यूटी क्रीम. आपकी जिल्द की साख को बेहतर करती है, नरम बनाती है आपकी स्किन को, खूबसूरत जिल्द आपको फराहम करती है. और जनाब सबसे मजे की बात कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है. तो जिन लोगों की स्किन जो है ना वो थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप सी होती है और आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं

0: इसी वजह से कि आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपकी स्किन खराब हो जाती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप बाकायदगी से कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया प्रोडक्ट है. और जनाब पाकिस्तान में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, वो भी गारंटी के साथ. और उसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये बाहर के ममालकात में भी आपको मिल रही है. और एक मजे की बात है कि जब मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि विटामिन ई बीड्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, तो विटामिन ई बीड्स जो होते हैं ना वो इतना, यानी कि उसके जो फायदे होते हैं ना वो इतने ज्यादा होते हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा. और एक मजे की बात है कि विटामिन ई बीड्स जो है ना वो पाकिस्तान में 2-3 प्रोडक्ट्स ही हैं जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है, और उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आ जाती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए भी है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटनिंग नाइट क्रीम है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट के टाइम. और उसके अलावा आप साथ में इस्तेमाल करेंगे डी स्किन फेस वॉश. और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लींस करता है, आपकी स्किन को जो है ना वो लवली बना देता है. इतना खूबसूरत, इतना लविंग प्रोडक्ट है ना कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप कितनी अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं. ये इतना क्रीमी है, इतना मतलब इसका टेक्सचर मस्त है ना कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि आप वाकई कोई अच्छा वाला एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आप डी स्किन का फेस वॉश लगा के देखिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा कर देखिएगा, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं. और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये हैं कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि अगर आप सो रहे हैं, सोने से पहले अगर आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लिया और साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश करके फिर आपने जाहिर सी बातें क्रीम लगानी है, तो जब आप ये तरीकेकार फॉलो करेंगे ना तो आप यकीन जाने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं. तो जरूर से ट्राई करके देखिएगा, आप खूबसूरत ही खूबसूरत होते जाएंगे. इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, इसी पैनल पर आपके मैसेजेस हैं, आपकी कॉल्स का सेगमेंट स्टार्ट किया जा रहा है. तो अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595. और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो कॉलिंग नंबर है 03-22-13-22-88. तो ये वाली फर्स्ट कॉल पिक करते हैं, देखते हैं कौन मौजूद है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: अस्सलाम. अगर मौजूद है
1: अभी कुर्बान अली खास्ते जो कला कुर्बान का.
0: ओके कुर्बान भाई, छाला तांजो खुश आयो.
1: वाह लगी भी है, शुक्र अल्लाह का इताना बेनर नहीं जाओ.
0: ओके प्रोग्राम बुदो प्या.
1: बिल्कुल बुदो प्या.
0: टॉपिक ते छा चवंदा.
1: टॉपिक के आज में नशीला पर यक्तो बजे की है जो लहा हो जो वदो पाता है ना नशीले नशीला पर गले जो बुदाई ना जाओ जो लगा.
0: मुखे बुदायो ता केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया. आवाज शुरू कर जी तो इस्तेमाल कयो पया त ओके आवाज में थोड़ो नेटवर्क में थोड़ो मसलो आए तांजो आवाज सही तरीके से न पो अचे उन जगह ते बी करे कॉल कर जते तांजो नेटवर्क क्लियर इंदो होजे जे तांजो आवाज ते सफा साफ सथरो अचे. ओके सो कॉलिंग नंबर आ है 03-22-13-22-88. नेक्स्ट कॉल जी तरफ अचू था दिसो नेक्स्ट कॉलर केरे से सगर मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: केरे से सगर मौजूद
1: है.
0: ओके मोहम्मद अजीज भा खुश आयो.
1: हेलो
0: ओके अलहमदुलिल्लाह खैर लगो पिया. प्रोग्राम बुधो पिया प्यारा भा.
1: जी जी
0: केड़ो प्रोग्राम आ नालो अचे तो
1: भई नालो कोंदो जे प्रोग्राम स्क्रीन के बारे में करे नालो अस के विसरी या बतरी प्रोग्राम बंद मरम जी करे.
0: हां नन हाणी ते स्टार्ट थी यो ना.
1: जी जी आ स्टार्ट या बदी सा.
0: ओके प्रोग्राम जो नालो आ वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. हाँ आवाज कट जियो ताजो मुके बुदायो ताजो प्रोग्राम बुधो पे आया कोन. अच्छा त मुके यो बुदायो त टॉपिक ते तमा छा चवंदा. दोस्तन के याद कंदा. ओके ओके गाल तो समझ में ना आई पर ठीक. अलाए छो मतलब यो मु नोट कयो आ तकड़ी नी अगर कॉल सही अचे थी त नेक्स्ट डे तवा जो कॉल सके नो थोड़ो डिस्टर्ब थी वने चो सो असा नेक्स्ट कॉल वठना सी दिसु था नेक्स्ट कॉलर के असा सगड मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो आवाज कट जी दो। हेलो हाँ आवाज कट जी दो सफा हलाए छो। हाँ हाँ अचे तो आवाज खेर तुम बुधा ठीक आयो अलहमदुलिल्लाह प्रोग्राम बुध पे टॉपिक बिल्कुल यही गाल है टॉपिक ते चवंदो न गाल चलो मुख्य बुधा कड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर पा को मिली अच्छा चलो सही अच्छा आयरम थैंक यू सो मच किड जी हाँ मौजूद जबल ते चढ़िया बीठा हा बिल्कुल यही गाल है मुखे बुधाए प्रोग्राम बुधो पया अमजद भा तां जी भी कॉल की नजर लगी वे वाने तां जो आवाज भी कट जे थो हां केड़न तो हसन की याद कंदा
1: बस जाके मुझे
0: अच्छा वाइट एज का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था या डी स्किन जा बुधायो था हाल हवाल तो दियो अलाई छा छ ओके ओके थैंक यू सो मच हाँ जी सो कॉल सच्ची बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि कॉलर्स क्या कह रहे हैं और ये कॉल के साथ क्या मसला है और चलें जी हम कॉल तो लेंगे लेकिन आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं और आप क्या कह रहे हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो कॉलिंग नंबर है 0332132288 कॉल करें तो किसी ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाएं जहां पर आपको लग रहा हो कि यहां पर नेटवर्क फुल आता है। ओके जी सो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सरोजानी क्या हाल है मैं भी आपके साथ साथ हूँ नाइस शो एंड आई शेला गुल का सॉन्ग मु दिल तो के दई छड़ी सडो मु दिल तो के दई छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी मु दिल तो का वठी छड़ी लुबना हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी लुबी आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और उनका अलावा हमारे साथ हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान कैसी हो डियर डियर सफा भलिया तां बुधाए कि आयो फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है खुशामदीद करते हैं आपको फजीला सिंधी उनका अलावा हमारे साथ जी यहाँ पर मौजूद हैं इरम क्या कहती हैं हाँ जी वो अभी तक मेरी दोस्त हैं और बहुत अच्छी लड़की है वो माशाल्लाह और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ साइमा मीर कहती हैं कि वही तो आज देखो ना हाँ ये बात तो बिल्कुल है अगर कॉल्स भी सही चल जाती प्रोग्राम में तब तो ज़्यादा ही अच्छा होता लेकिन चलें कोई बात नहीं और उसके अलावा क्या कहती हैं आगे आपने मुझे दुआएं दी हैं बहुत शुक्रिया साइमा मीर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हमारा शो सुन रहे हैं मोरो से ओके जी आपको भी खुशामदीद कहा जाता है और इमरान अली बिरोही भाई कहते हैं कि सब चेहरा سب چہرہ پڑھا نہ کر اے زندگی کچھ مانن سا محبت بھی آہے ہاں اگر وری خبر پہ چنے اصلیت جی پوا کے نوک تیندو آہے چلے بہت بڑھیا خوش رہیں اور ساتھ ساتھ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال بھی کرتے رہیں اوکے جی پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے ٹائم ہوا جاتا ہے ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب آتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا جلدی سے واپس آپ لوگوں کے پاس آئیں گے سو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ موجود رہے گا سنتے رہیے انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں سو اسٹے ٹیون And keep listening. White-ish and D-Skin Beauty Show is sponsored by White-ish Beauty Products and D-Skin Beauty Products. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے.
2: DAFM 88 Network. आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0303 5592120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385769
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-3865-453
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा पर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताया जाता है. वो इसलिए बताया जाता है ताकि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी समाते हैं, जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, उनको ये पता हो कि जब आप इस्तेमाल करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को अंदाजा हो कि आप जो चीज परचेज करने जा रहे हैं तो वो चीज आप क्यों परचेज करने जा रहे हैं. अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हम अगर चीजें परचेज करने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट देकर हम जरा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आप लोगों में ये अवेयरनेस लाने के लिए कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आप लोगों को पहले से उसके बारे में पता हो, तो बिल्कुल उन्हीं चीजों के बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. ओके, सो आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है उनको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. और इसी के साथ साथ

ओकरी गाना सुन रही है जरा, कितना अच्छा गाना मैंने आप लोगों के समातों की नजर कर दिया है। बिल्कुल जी, गाना तो सुन रही हूँ और साथ ही साथ बिल्कुल जी आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे और प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल हमें अभी अभी सुनाया, स्टार्ट किया होगा, या फिर जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर मौजूद हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम खास करके उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो लोग, ज्यादातर ऐसा होता है ना कि वो सेंसिटिव स्किन होने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई, इसे सारी स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को जो है ना, वो ये बताते चलो कि जब आप सेंसिटिव स्किन होने की वजह से परेशान होते हैं ना कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है। आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या ही जाता है। उसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। और जनाब डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, डी स्किन फेस वॉश भी ऑल स्किन टाइप के लिए, और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत बना देता है कुल मिलाए कटे सटे। ओके, सो आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटनिंग नाइट फार्मूला है, नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, ना मिलने की सो बढ़ता

ओके जी, गाने सुनेंगे. आप लोगों के मैसेजेस हैं, जरा उनकी जाने भी आ जाती हैं. आप हमारे साथ मौजूद हैं तो देखते हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं. यहाँ पर फजीला सिंधी हमें सुन रही हैं, कहती हैं डियर स्वीटी आप कब से शो कर रही हैं, मुझे शायद आज ये तीसरा शो होगा. हाँ जी. और उसके अलावा कहती हैं ओए प्यारी आपका तो पता नहीं, बाकी आपकी आवाज बड़ी मीठी है. थैंक यू, शुक्रिया. कम समीदा.

ओके जी, निदा कहती है कि क्या था मशवरा बताएं ना, ये कहूंगी कि आप जैसी हैं वैसे ही रहिएगा, क्योंकि जो लोग ऐसा होता है ना कि जो तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो लोग जरा अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। और उनका अलावा साइमा मीर कहती है ख्वाब में तो अलाए केतरा भेरा वर्ती आए वाइटिश लवली क्रीम, बाकी जाग में अलाए कॾहिं वठंदासीं, इनशाला वठंदासीं तो सफ़ा दिल जाए कर जी लाड़कानो। ओके जी, ओके लाड़काना, आप आइएगा तो परचेज कीजिएगा, क्योंकि आप परचेज करेंगी, इस्तेमाल करेंगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा वाला प्रोडक्ट है, तो इस्तेमाल कीजिएगा। और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई कहते हैं कि शाह इंतजार करनी मोहब्बत आहे या उन या वो भी पान सा जुल्म आहे, अलाई या चीज समझ में नहीं दिया। ये बातें मुझसे मत पूछा करे। और सैमा कहती है कि ना बा असा भी यो कौन समझो सी, हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल मुख शावस आए। ओके थैंक यू। अच्छा इरम कहती है आपकी जवाब है ओके जी, ओके इंशाल्लाह इससे तो पहले ही होगा मुझे ये लग रहा है, आप टेंशन मत लिया करें। और शोनी कहती है आपकी जान में भी आ गई आप के शो में, अभी अभी उठी हूँ नींद से, और क्या कहती हैं कि नींद से उठकर ही आपके शो में आ गई हूँ। ओके जी, और ये मैंने एक स्पेशल सा गाना लगाया है, ये स्पेशल सा गाना है जो कि मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि हम अपने प्रोग्राम में सुनेंगे, आज मैंने ये सोचा कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो इस गाने को सुन लेते हैं, ये मेरा फेवरेट गाना है।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना जो कि आपको भी अच्छा लगा होगा. और ये गाना पता नहीं क्यों मेरा बहुत फेवरेट है. और ये गाना मैंने आज पहली मरतबा प्रोग्राम में लगाया. और इसी के साथ साथ एक और गाना जी को ही गानो आए ही असानी प्रोग्राम जो लास्ट ब्रेक थे हमारा है आई तमाम सबसे गुड मौजूद आए प्रोग्राम आए जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं ना.

ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर हैं मौजूद लुबना के लिए के सिडो मेरी प्यारी कजिन्स भी आपका शो सुन रही हैं। मेरे साथ हैं जनाब और मौजूद हैं महक, फलक, अरबेश और एक लड़की और भी है, और एक और लड़की का नाम क्यों नहीं लिखा और कहती हैं कि मेरे साथ जो मेरी कजिन्स बैठी है ना, तो वो आपको पूछ रही हैं कि ये उर्दू है या सिंधी है, वो आपको उर्दू स्पीकिंग समझ रहे हैं। अच्छा ना बाबा, सिंधी आयो, सिंधी मानू।

एवरीबॉडी, सो यहाँ पर हमारे जाने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है और प्रोग्राम आप सुन रहे थे वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप इस्तेमाल करेंगे जनाब वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि आपके लिए वाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है, वाइट एश लवली क्रीम मौजूद है, ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है और वाइट एश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है जिसे आप यानी कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। फेयरनेस क्रीम जिसे आप मेकअप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी वाली क्रीम है। उसके अलावा अगर एक्नी की वजह से आप परेशान है तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके लिए अवेलेबल है। वाइट एश ब्यूटी सोप आपको मिल रहा है, वाइट एश फेस वॉश आपको मिल रहा है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है, डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। और खूबसूरती भी ऐसी वैसी नहीं कि बस आप इस्तेमाल करते रहें तो आप खूबसूरत रहेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि आपको जो खूबसूरती मिलेगी वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियां बांटते रहिए, लोगों को बताइए कि मार्केट में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। इसी के साथ साथ डायल कीजिएगा 03-15-799-0595 और मुझे दीजिए इजाजत, वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे थियण वारी है सुभाने वारे प्रोग्राम में। जी जी बिल्कुल, मैं कल लाजमी आऊंगी। और साइमा मीर आपका बहुत शुक्रिया और शहबाज भाई आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आपके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में तो जरा माजरत कर देते और सुभाणे जी तवां जा गाना हलाईंदासीं, सुभाणे तवां सां गॾु हूंदासीं 1 बजे खां 3 बजे ताईं, तव्हांजो असांजो साथ रहण वारो आहे। सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा, किथे का ग़लती थी हुजे, कोई लफ़्ज़ ॻाल्हायो हुजे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे, उन लाइ माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बका जो मामिलो आहे, रंडक क़बूल न कई वेंदी। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारण चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे हिकु तरफ़ खां मुअत्तल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति भारत जे मौक़िफ़ खे कंहिं बि फोरम ते पज़ीराई नाहे मिली। सिंध तास माहिदे खे ॿिन्ही मुल्कनि तस्लीम कयो हो। पाकिस्तान पाणीअ में रंडक क़बूल न कंदो। आबना हरमुज बाबति ईरान ऐं ओमान पारां ठहियल कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। आबना हरमुज बाबति गॾियल मुशावरत सां फ़ैसला करण ते इतफ़ाक़। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी ईरानी वफ़द जी क़यादत कई। ओमान जो नायब परॾेही वज़ीर वफ़द सां गॾु ॻाल्हियुनि में शरीक थियो। काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त गॾजाणीअ में इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश नामे तहत सामूंडी रियासतुनि जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं हक़नि जी रोशनीअ में आबना हरमुज जे मुस्तक़बिल ऐं इंतिज़ाम बाबति ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरान ऐं अमेरिका जो हिक ॿिए ते हमला रोकण ऐं कतर में ॻाल्हियूं करण ते इतफ़ाक़। अमेरिकी मीडिया जी दावा। अमेरिकी मीडिया मूजिबि तहरान हिक ॿिए ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीति ॻाल्हियूं बि थींदियूं, जंहिंजो वहिंवार आबना हरमुज हूंदो। ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुफ़ाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं बि जारी आहिनि। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल माहिदे जी भञकड़ी करे रहिया आहिनि, जंहिं सबबि ख़िते में अमन ऐं इस्तेहकाम बहाल न थी रहियो आहे। माहिदे ते नेकनीयती सां अमल दरामद जा ख़्वाहिशमंद आहियूं। माहिदे जी भञकड़ीअ ते ॿी धुर ख़िलाफ़ फ़ैसलाइता क़दम खया वेंदा। ईरान कतर में मुंजमिद कयल $12 अरब जे ईरानी असासनि मां $6 अरब जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे $12 अरब मां $6 अरब जारी थियणु घुर्जनि। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदुनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे। ईरान खे सख़्तु फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। कराचीअ जे कारोबारी मर्कज़ गुल प्लाज़ा खे लॻल बाहि हादसो करार। पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वटि जमा कराए छॾियो। गुल प्लाज़ा बाबति अदालती जांच रिपोर्ट खे चालान जो हिसो न बणायो वियो। दुकानदार नेमतुल्ला ऐं संदसि 11 सालनि जे पुटु हुज़ैफा खे जवाबदार तौरु नामज़द कयो वियो। गुल प्लाज़ा कमेटी जे सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल ऐं ॿियनि खे बि केस में नामज़द कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिबि गुल प्लाज़ा में बाहि लॻण सबबि 72 माण्हू सड़ी फोत थिया। हिन वक़्त ताईं 4 लाशनि जी बाक़ियात कंहिं बि वसूल नाहे कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सीसी 2024 जे पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करण जो हुकुम ॾिनो हो। करपुर जे कच्छे में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में झेड़ो, 2 ॼणा क़त्ल, 1 ज़ख़्मी। पुलो थाणे जे हदि ॻोठ कोराईअ में कोराई बिरादरी जी बिंदुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थियो। फायरिंग में रोशन ऐं कोराड़ो कोराई मारिजी वियो। मोहम्मद सिद्दीक कोराई ज़ख़्मी थियो। धुरिन में छिकताण वधी वई। सिंध में पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। कुंडली, दोदापुर ऐं मीरपुर भठोरो में धरणा। नवीसर खां पाणीअ जी खुट ख़िलाफ़ निकितल आबादगारनि जो पैदल मार्च कुंडली पहुतो। आबाशी ऑफिस अॻियां धरणो। दोदापुर में बि आबादगारनि पारां पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मीरपुर भठोरो में आबादगारनि पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ सजाव लोड ते धरणो हुयो। पाणीअ जी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। लाड़काणो में 4 ॾींहं अॻु राइस कैनाल में ॿुॾी वियल नौजवान जो लाश न मिलियो। वारसनि जो धरणो। लोहर कालो निवासी नौजवान मुज़वर शेख जे वारसनि औरतुनि समेत रसूलाबाद रोड ते धरणो हुयो। नौजवान जे भाउ वहीद शेख जो चवण आहे त 4 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, रेस्क्यू अमलो भाउ जो लाश हथ न करे सघियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में हिकु औरत समेत 4 ॼणा फौत। गंबट में क़ौमी शाहराह ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर। नारी फिज़ा ख़ासि खेली हयाती विञाए वेठी, अलाए यार ज़ख़्मी थियो। कश्मीर में टायरा टुटण सबबि मज़दा बीएस फीडर में किरी पई, ड्राइवर अली हसन उगाही फौत। कराची जे बल्दिया वारे इलाइक़े में तेज़ रफ़्तार गाॾीअ जो मोटरसाइकिल खे टकर, पीउ ऐं पुटु फौत। पोतनि जी सुञाणप अब्दुल मजीद ऐं संदसि पुटु अब्दुल जबार जे नालनि सां कई वई। कोट गुलाम मोहम्मद में अवामी तहरीक पारां पाणी जी खोट ऐं औरतुनि ते ज़ुल्म ख़िलाफ़ एहतजाज। अवामी तहरीक जे कारकुननि लियाकत चौक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो हुयो। अॻवाणनि चयो त सिंध में पाणी जी खोट ख़तम करे सूबे ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तम कयूं वञनि। हैदराबाद में वाटर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन के मुलाजमन जो 18 महीनों का पगार ए पेंशन न मिलने खिलाफ एहतजाज। मुलाजमन जो चवण है हैदराबाद वाटर एंड सर्विस कॉर्पोरेशन की इंतजामिया के गलत पॉलिसी सबब 3000 मुलाजम 18 महीनों का पगार ए पेंशन का महरूम है। पगार ए पेंशन जारी कई वे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर नमाज़ खां इशा जे नमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3885-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ऑफिस तलबी दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो परे ऑफिस मूजिब कराची में दहशतगर्द हमले में साबित थो अफगान सदर मीन पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल थी रही है। मोदी पाकिस्तान मथा आबी दहशतगर्दी करण चाहे तो वजीर आजम फील्ड मार्शल चई चुका है पानी बका जो मामलो है रंडक कबूल न कई वी सुतमा वाले वफाकी वजीर अता तारड़ चवा है सिंध तास माहदे के एक तरफ का मुअत्तल न तो कर सके। सिंध तास माहदे बाबत भारत के मौकिफ के कें भी फोरम से पजीराई ना मिली। सिंध तास माहदे के बिन्हीं मुल्क तस्लीम किया हो पाकिस्तान पानी में रंडक के कबूल न कद। आबना हरमुद बाबत ईरान ओमान पारा ठहल कमेटी जो पे इजलास आबना हरमुद बाबत गडल मुशावरत से फैसला करने तफाक ईरानी नायब परदेही वजीर काजिम गरीब आबादी ईरानी वफद की क्यादत कई। ओमान जो नायब परदेही वजीर वफद से गड गाल में शरीक थो। काजिम गरीब आबादी चवे तो गजानी में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे तहत सामूरी रियासत की खुदमुख्तियारी हकन की रोशनी में आबना हरमुद के मुस्तकबिल इंतजाम बाबत गाल व्यू। ईरान अमेरिका जो एक बे से हमला रोकण और कतर में गाल इतफाक अमेरिकी मीडिया की दावा अमेरिकी मीडिया मूजिब तेहरान एक बे से हमला रोकण से इतफाक किया है। बिन्हीं मुल्क विच में सुभाने मामले से दोहा में सीधी रीत गाल भी थन्दू जिनो महवर आबना हरमुस हों। बिन्हीं मुल्क विच में मुफाहमती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जो गाल भी जारी हैं। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चवा है अमेरिका इसराइल वायदे की भनकड़ी कर रहा है जै सबब खिते में अमन और इस्तेहकाम बहाल न थी रो है। माहदे से नेक नीति से अमल दरामद जहा ख्वाहिशमंद आय माहदे की भनकड़ी से बी धुर खिलाफ फैसला ता कदम खाया वा। ईरान कतर में मुंजमद कल 12 अरब डॉलर के ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करने मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान है कतर में मौजूद ईरान के 12 अरब डॉलर में 6 अरब डॉलर जारी थे घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है बहरन के खबरदार क्यों था पैं हदन में रहे पैं मुस्तकबिल से रांद न खेडे ईरान के सख्त फैसलो करण से मजबूर न किया वे। कराची के कारोबारी मरकज गुल प्लाजा के लगल बाह हादसो करार पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वट जमा करा छो। गुल प्लाजा बाबत अदालती जांच रिपोर्ट के चालान जो हिस्सों न बनाया वो दुकानदार नेमतुल्ला संदस 11 साल के पुट हुज़ैफा के जवाबदार नामजद किया वो। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता नायब सदर अमार इस्माइल और बेन के भी केस में नामजद किया वो। जांच रिपोर्ट मूजिब गुल प्लाजा में बाह लगने सबब 72 मानू सड़ी फुत थे चयन लाशन की बाकियात कें भी वसूल ना कई। सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बाबत सिंध हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर छो। सिंध हाई कोर्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सीसीई 2024 के पेपर्स जो समूरो रिकॉर्ड सील करे पेश करने जो हुकुम दिनो हो। कैलपुर के कच्चे में कोराई बिरादरी की बिंदुरी में झेड़ो बजना कतुल एक जख्मी पुलो थाने के हद गोठ कोराई में कोराई बिरादरी की बिंदुरी में मामूली गाल छेड़ो थो फायरिंग में रोशन ए कोरालो कोराई मारजी वो मोहम्मद सिद्दीक कोराई जख्मी थो धुरन में छिकतान वी वही। सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज कुंडरी दोदापुर और मीरपुर बठोरो में धरना नवीसर का पानी की खोट खिलाफ इक्तल आबादगार पैदल मार्च कुंडरी पहुंतो आपाशी ऑफिस अगैं धरणो दोदापुर में भी आबादगार पारा पानी की खोट खिलाफ एहतजाज किया वो। मीरपुर बठोरो में आबादगार पानी की खोट खिलाफ सजावन रोड से धरण हो पानी खोट खत्म करने जो मुतालबो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में रोड हादसों के नतीजे में एक औरत समेत 4 जना फौत गंबट में कौमी शाहराह से ट्रक जो मोटरसाइकिल की टक्कर नारी फिजा खास के लिए हयाती विजाए वेठी अलहार जख्मी थो। कश्मोर में टायरा टुटन सबब मजदा बीएस फीडर में किरी पड़ी ड्राइवर अली हसन उगाही फौत। कराची के बल्दियावार इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी जो मोटरसाइकिल के टक्कर पीओ पुट फौत पोतन की सुणप अब्दुल मजीद और संदस पुत्र अब्दुल जबार के नाल से कई वही।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8559।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट ऐं मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: ईदत सिर्फ चाहे नाहे ठहंदी महफिलों सजंदियों हैं टपाल मेजबान ईद उल अजाजो असली मेजबान
2: इसमें है हाई क्वालिटी पीसी 5 साल की वारंटी के साथ
3: रॉयल इनवर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।

मोदी पाकिस्तान मथा आप ही दहशतगर्दी करण चाहे तो वजीर आजम फील्ड मार्शल चई चुका है तो पानी बका जो मामलो है दंड कबूल न कई वी सुध समा वाले फाकी वजीर अताउल्ला तरण सिंध तास माहिदे के मुअत्तल नथो करे सकजे। सिंध तास माहिदे बाबत दुनिया पाकिस्तान जो मौकिफ तस्लीम कयो है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक चयो था पाकिस्तान पेंजे पानी तरफ वधंदड़ हर हथ काटे छदींदो पानी ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो। आपना हरमुज बाबत ईरान ए अमान पारा ठायल कमेटी जो पहरियों इजलास आपना हरमुज बाबत गडियल मशावरत सा फैसला करते तफाक ईरानी नायब वडई वजीर कासिम गरीबाबादी ईरानी वफद की क्यादत कई। अमान जो नायब वडई वजीर वफद सा गड गालियन में शरीक थियो। कासिम गरीबाबादी चयो है ते गडजाणी में इस्लामाबाद मुफामती यादाश्त नामे ते सामुंडी रियासतन जी खुद मुख्तारी ए हकन जी रोशनी में अपना हरमुज के मुस्तकबिल ए इंसान बाबत गालियों कई हुई। ईरान ए अमरीका जो एक बेते हमला रोकण ए कतर में गालू करते तफाक अमरीकी मीडिया की दावा अमरीकी मीडिया मूजिब तेहरान एक बेते हमला रोकण ते इतफाक कयो आहे। बिन्ही मुल्कन विच में सुभाणे मामले ते दोहा में सिधी रीत गालू भी थींदियूं जैंजो मेवर आपना हरमुस हूंदो। बिन्ही मुल्कन विच में मफामती यादाश्त तहत टेक्निकल सतह जूं गालू भी जारी आहिनि। ईरानी पटेल वजीर अब्बास राखी चयो आहे ता अमरीका इसराइल माहिदे जी भजकड़ी करे रहा है जै सबब खित्ते में अमन ए इस्तेकाम बहाल न थी रहो आहे। माहिदे ते नेक नियती से अमल दरामद जा ख्वाहिशमंद आहियूं। माहिदे जी भजकड़ी ते बी दुर खिलाफ फैसला ता कदम खया वेंदा। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर से ईरानी असासन मां 6 अरब डॉलर जारी करने का मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान है त कतर में मौजूद ईरान जी 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है त बहरीन के खबरदार कयूं था त पेंजे हदन में रहे पेंजे मुस्तकबिल सां रांद न खेले ईरान के सख्त फैसलो करते मजबूर न कयो वञे।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04-372 ऐं 0242-46-0100।

डूंगर डुखो यन के दिलासा लेजन घणो कुछ जे तिन के जिना ता होता वन तो की संदा तिन पहन पेर डुखो ही

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

0: यार ताहिर खैर ताहे यार तुझा वार बिखरियल आहिन हाल उजड़ियल खैर ताहे यार
1: बस भावख्तियार केड़ा तो सूर पुछी सच ई हुआ तो मुखे इश्क बिल्कुल तबाह करे छरियो यार इश्क मुजा खंथा ही खणी छड्या है
2: यार असांगे त इश्क टेकाए छड्यो
1: बस भावख्तियार मुझे इश्क पाण क्यों

सुदसमा वारे पाकी वजीर अताला तरण अफगानिस्तान में पाक फौजी कैल ऑपरेशन जीबीटी जारी करे सघी। कराची में दहशतगर्द हमले बाद पाकिस्तान दहशतगर्द खिलाफ कार्रवाई कई वही। भारतीय हामी दहशतगर्द तंजीम जमात अल अहरार की पक्तिका ए किन्नड़ में कैंपस के निशानो बनाया वो। पाक फौज अफगानिस्तान में कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द मारी गया हुआ, केतरा ही जख्मी थे। दहशतगर्द जहा हथियार ए बारूदी मवाद भी तबाह थी। कराची में दहशतगर्द हमले थे पाकिस्तान जो अफगानिस्तान आडो सख्त एहतजाज। अफगान नाजिम उमूर परडेही ऑफिस तलफी दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। परडेही ऑफिस मूजिब कराची में दहशतगर्द हमले में साबित थो अफगान सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी लाइ इस्तेमाल थी रही है।

मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करण चाहे थो। वज़ीर-ए-आज़म ऐं फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी पका जो मामिलो आहे, रंडक क़बूल न कई वेंदी। सुध समाव वारे फाकी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे मुअतल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो आहे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ काटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।

ईरान कतर में मुंजमद कल 12 अरब डॉलर से ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करने का मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पेशिकान कतर में मौजूद ईरान के 12 अरब डॉलर में 6 अरब डॉलर जारी थे घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती बहरीन के खबरदार क्यों था हदन में रहे मुस्तकबिल से रांद न खेले। ईरान के सख्त फैसलो करते मजबूर न कर वे।

सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटी जो इजलास बाबति ग़लति ॼाण ॾियण ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। FBR अमलदारनि खे इजलास खां ॿाहिरि कढी छॾियो। FBR खे तमाक बाबति टैक्स ते मुकमल ॼाण ॾियण जी हिदायत। कमेटी चेयरमैन सैफुल्ला आबड़ो चयो त 3 खां 4 आफ़िसरनि मुल्क जो बेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे। सेनेटर तलहा महमूद चयो त 5 आफ़िसर कहिड़ा आहिनि। सैफुल्ला आबड़ो वराणियो त हुकमरान 5 आफ़िसर पंजाब मां पाण सां गॾु खणी आया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: रबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: अब आप सुनेंगे जी एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हमले बाद पाकिस्तान दहशत गर्दन खिलाफ कार्रवाई कई वही भारतीय हामी दहशत गर्दन टीम जमात अल हरार जिपक्तिया किन्नड़ में कैंपस के निशानों बनाए वो पाक फौज अफगानिस्तान में कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द मारजी पाया हुआ केतरा ही जख्मी थे। पाक फौज के कैल ऑपरेशन की वीडियो जारी करे छी। कराची में दहशतगर्द हमले बाद पाकिस्तान दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई कई वही भारतीय हामी दहशतगर्द तंजीम जमात अल हरार जी पक्तिया किन्नड़ में कैंपस के निशानों बनाए वो पाक फौज अफगानिस्तान में कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द मारजी पाया हुआ केतरा ही जख्मी थे। दहशतगर्दन जा हथियार ए बारूदी मवाद भी तबाह थी वो

अमेरिका सां सिंधियन ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो नाहे। ईरानी नायब परडे॒ही वज़ीर क़ासिम ग़रीबाबादी चयो आहे त वायदन ते अमल दरामद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जी हिन वक़्ति तस्दीक नथी करे सघिजे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर हालतूं ठीक थियण ते ई थी सघे थो। तारीख़ ऐं जॻह ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। 40 मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आपना हुर्मुज़ बाबति ईरान ऐं अमान जी कमेटी जी बि गॾिजाणी थी। हुर्मुज़ बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजबित कयल 12 अरब डॉलर जे ईरानी असासन मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बेरनि खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजे हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे। ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। सेनेट जे घरू मामलनि बाबति सब कमेटी जो इजलास। टैक्स चोरी बाबति ग़लति ॼाण ॾियण ते कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार। एफबीआर अमलदार खे इजलास खां ॿाहिरि कढी छॾियो। एफबीआर खे तमाक बाबति टैक्स ते मुकमल ॼाण ॾियण जी हिदायत। कमेटी चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो चयो आहे त 10 खां 4 आफ़िसरनि मुल्क जो बेड़ो घोड़े छॾियो आहे। सेनेटर तलहा महमूद चयो त 5 आफ़िसर कहिड़ा आहिनि। सैफुल्ला अबड़ो विराणियो, हुकमरान 5 आफ़िसर पंजाब मां पाण सां गॾु खणी आया आहिनि।

कराची जी कारोबारी मर्कज गुल प्लाजा के लगल बाय हादसो करार, पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वट जमा कराए छो। गुल प्लाजा बाबत अदालती जांच रिपोर्ट के चालान जो हिस्सो न बढ़ाए वो। दुकानदार नेमतुल्ला संदस 11 साल के पुट हुजैफा जवाबदार तौर नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल बेन के भी केस में नामजद कर। जांच रिपोर्ट मूजिब गुल प्लाजा में बाय लगन सबब 72 मानू सड़ी फोत थे। इन वक्त ताई चैन लाशन की बाकियात कें भी वसूल नहीं कई।

0: एफएम नेटवर्क पर आप
1: सिंध हुकूमत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

कराची में दहशतगर्द हमले बाद पाक फौज अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दन के थाकन खिलाफ कार्रवाई सद समा वाले पाकी वजीर अताउल्ला तारड पाक फौज अफगानिस्तान में कल ऑपरेशन की वीडियो जारी कर सदी पाक फौज दहशतगर्द तंजीम जमायत अल हरार की पख्तिया पख्तिका किन्नड़ में कैंपस के निशानों पढ़ाया पाक फौज अफगानिस्तान में कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द मारजी ए केतरा ही जख्मी थे हुआ दहशतगर्दन का हथियार ए बारूदी मवाद भी तबाह थो कराची में दहशतगर्द हमले ते पाकिस्तान जो अफगानिस्तान आडो सख्त एहतजाज अफगान नासिम अल हूर जी बडई ऑफिस तरफी दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो बडई ऑफिस मूजिब कराची में दहशतगर्द हमले मां साबित थो त अफगान सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी लाइ इस्तेमाल थी रही है।

अमेरिका ईरान में अपना हुरमुस तां शुरू थियल चिकताण घटजण लगी। ईरान की तरफा से सुभाणे दोहा में बिन्ही मुल्क के नुमाइंदन की मुलाकात थींदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावा, व्हाइट हाउस चयो आहे त ईरान से आला सतह गालियन से गड टेक्निकल सतह जो गालियों भी थींदियूं। स्टेवर्ट कोफ और जेरेड कुशनर गालियन में शरीक थींदा। अमरीकी अहदेदार मौजिब बिन्ही मुल्क जहां अमलदार मुसलसिल रबते में आहिन। दोहा में अपना हुरमुस समेत अहम मामलों से गालियों थींदियूं।

अमरीका सां सिधियन ॻाल्हियुनि जो को बि मनसूबो न आहे। ईरानी नायब परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त वायदनि ते अमल दरामद लाइ कतर सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। टेक्निकल टीमनि विच में ॻाल्हियुनि जे हिन वक़्तु तसदीक नथी करे सघिजे। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर हालतूं ठीक थियण ते ई थी सघे थो। तारीख़ ऐं जॻह ते इतफ़ाक़ थी वेंदो। सालिस मुल्कनि सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी आहे। आफ़्टर हर्मुस बाबति ईरान ऐं अमान जी कमेटी जी बि गॾिजाणी थी। हर्मुस बाबति मुशावरत कई वई। ईरान कतर में मुंजमद कयल 12 अरब डॉलर जे ईरानी असासनि मां 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर मां 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जनि। ईरान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जे सलाहकार अली अकबर विलायती चयो आहे त बहरीन खे ख़बरदार कयूं था त पंहिंजी हदनि में रहे, पंहिंजे मुस्तक़बिल सां रांदि न खेॾे, ईरान खे सख़्त फ़ैसिलो करण ते मजबूर न कयो वञे। वज़ीर आज़म पारां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण ऐं ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम क़ाइम करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म सदारत हेठि वज़ारत ते क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़ुज़ ऐं ज़रई शोबे में सुधारनि बाबति अहम इजलास थियो। वज़ीर आज़म सूबनि जी मुशावरत सां क़ौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ण जी हिदायत कई। शहबाज़ शरीफ़ चयो त ज़रई शोबो जटादार माशी तरक़ी में अहम किरदार अदा करे सघे थो। एआई जी मदद सां बि ज़रई शोबे खे बहितर बणाए सघिजे थो। मोदी पाकिस्तान मथां आबी दहशतगर्दी करण चाहे थो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल चई चुका आहिनि त पाणी बकाउ जो मामलो आहे, रंड क़बूल न कई वेंदी। सुध समाह वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला तारण चयो आहे त सिंध तास माहिदे खे मुअत्तल नथो करे सघिजे। सिंध तास माहिदे बाबति दुनिया पाकिस्तान जो मौक़िफ़ तस्लीम कयो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणी तरफ़ वधंदड़ हर हथ काटे छॾींदो, पाणीअ ते धाड़ो बर्दाश्त न कयो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारी जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-3008-5569।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो जारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-1800-003।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर मस्त बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: रब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460-1

0: एलोवेरा फ्रेश
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100

अमेरिका ईरान में अपना हरमुस शुरू थे चिकताण घटजण लगी। ईरान की दरख्वास्त सुबे दोहा में बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदन में मुलाकात थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावा। व्हाइट हाउस है त ईरान से आला सतह गालियन से गड टेक्निकल सतह जालू भी थन्दूं। स्टेवर्ट कोफ ए जेरिड कृष्णर गालियन में शरीक थन्दा। अमरीकी अहदेदार मूजिब बिन्हीं मुल्क अमलदार मुसलसल राबते में आन। दोहा आपना हरमुस समेत अहम मामलों से गालू थन्दूं। अमरीका से सिद्धियन गालियन जो को भी मनसूबो ना है। ईरानी नायब परडेही वजीर कासिम गरीबाबादी है वायदन से अमल दरामद लाए कतर से गाल जारी आन। टेक्निकल टीम विच में गालियन की इन वक्त तस्दीक नी कर सकते। टेक्निकल सतह से गालियन जो पर्यो दौर हालतू ठीक थियण ते ही थी सके तो। तारीख ए जगह से इतफाक थी वो। 40 मुल्क से मुशावरत जो सिलसिलो जारी है। आपना हरमुस बाबत ईरान ए अम्मान जी कमेटी की भी गड़जानी थी। हरमुस बाबत मुशावरत कई वही। ईरान कतर में मुंजमद कल 12 अरब डॉलर की ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करण जो मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पेशिकयान है कतर में मौजूद ईरान की 12 अरब डॉलर में 6 अरब डॉलर जारी थियण घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनई के सलाहकार अली अकबर विलायती है बहरीन के खबरदार क्यों था पेंजे हदन में रहे पेंजे मुस्तकबिल सा रान न खेले। ईरान के सख्त फैसलो करते मजबूर न कर वने।

कराची में दहशतगर्द हमले बाद पाक फौज के अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द के थाकंड खिलाफ कार्रवाई सुध समा वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ पाक फौज के अफगानिस्तान में कल ऑपरेशन की वीडियो जारी कर छी। पाक फौज दहशतगर्द तंजीम जमायत उल अहरार की पक्तिका किन्नड़ में कैंपस के निशानों बढ़ाया। पाक फौज के अफगानिस्तान में कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द मारजी केतरा ही जख्मी थे हुआ। दहशतगर्दन जहा हथियार बारूदी मवाद भी तबाह थे।

कराची में दहशत गर्द हमले ते पाकिस्तान जो अफगानिस्तान आड़ो सख्त एहतजाज अफगान नाजिम उलूमूर जो पढ़ाई ऑफिस तलबी दहशत गर्दन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो पढ़ाई ऑफिस मूजिब कराची में दहशत गर्द हमले मां साबित थो तो अफगान सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ दहशत गर्दी ला इस्तेमाल थी रही है। वज़ीर आज़म पारा कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सदारत हेठ वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़ुज़ ज़रई शोबे में सुधारन बाबत अहम इजलास थो। वज़ीर आज़म सूबन की मुशावरत से कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द जोड़ने की हिदायत कई। शहबाज़ शरीफ चाहो तो ज़रई शोबो जटादार माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करे सके तो ए आई जी मदद से भी ज़रई शोबे के बेहतर बनाए सके तो।

मोदी पाकिस्तान मथा अभी दहशतगर्दी करण चाहे तो वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल चई चुका है पानी पका जो मामलो है नंडक कबूल न कई वी सुध समा वे फाकी वजीर अता तारड़ है सिंध तास मुआदे के मुअल न तो कर सकते सिंध तास मुआदे बाबत दुनिया पाकिस्तान जो मौके तस्लीम किया है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान पैंजे पानी तरफ वधंदड़ हर हथ काटे छदीद पानी से धाड़ो बर्दाश्त न कर वो सेनेट के घरू मामलों बाबत सब कमेटी के इजलास में कुकिन क्वीन अनमोल और पिंकी जो जिक्र डीआईजी साउथ कराची असद रजा पारा कमेटी के पिंकी केस बाबत ब्रीफिंग कमेटी चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो पिंकी सिंध में रहे त केस कुछ नींदड़ साल पिंकी के सदारती अवार्ड मिली वो अनमोल पिंकी के वजीर आजम का भी प्रोटोकॉल दिनों पे वे पतो लगाया वे तो पिंकी के पोया केर है।

कराची जे कारोबारी मर्कज गुल प्लाजा के लगल बाय हादसो करार, पुलिस चालान प्रोसिक्यूशन वट जमा कराए छो। गुल प्लाजा बाबत अदालती जांच रिपोर्ट के चालान जो हिस्सो न बणाए वियो। दुकानदार नेमतुल्ला ए संदस 11 सालन जे पुट हुसैफा जवाबदार तौर नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर बास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल ए बेन के भी केस में नामजद कयो वियो। जांच रिपोर्ट मूजिब गुल प्लाजा में बाहि लगण सबब 72 माण्हू सड़ी फोत थिया। इन वक्त ताईं चइनि लाशनि जी वाकियात कंहिं बि वसूल नाहे कई।

सिंध में अगवा थे प्रिया कुमारी उजाला परवीन समेत बेन बारन जिबाजा बिलाय बबरलो में चौथे डी एहतजाज जारी। प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी तरफा लगायल एहतजाजी कैंप में इलाके वासी सियासी समाजी अगवाणन की शिरकत। प्रिया कुमारी उजाला सोलंगी नवी दाशारी सभा कलोड़ो फातिमा तीणो बेन बारन की बाजाबी तीन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध में अगवा थे समूर बार बाजब करण मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 553 89।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

अमेरिका ईरान में अपने हरमुस्तान शुरू थे चिट्टान गटचण लगी। ईरान की दरख्वास्त सुभाने दोहा में बिन्ही मुल्क के नुमाइंदन की मुलाकात थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावा व्हाइट हाउस है ईरान से आला सतही गाल गड टेक्निकल सतह जो गाल भी थन्दूँ। स्टेवर्ट कोफ और जेरेड किश्नर गाल में शरीक थन्दा। अमरीकी अहदेदार मौजिब बिन्ही मुल्क जहा अमलदार मुसलसिल राबते में आन। दोहा में अपने हरमुस समेत अहम मामलों से गाल अमरीका सा सिद्धियन गाल को भी मनसूबो ना है। ईरानी नायब परडे वजीर कासिम गरीबाबादी है वायदन से अमल दरामद लाए कतर से गाल जारी आन। टेक्निकल टीम विच में गाल वक्त तस्दीक नी कर सकते। टेक्निकल सतह से गाल पर्यो दौर हालतू ठीक थे ही सके तो तारीख ए जगह से इतफाक वो सालिस मुल्क मुशावरत जो सिलसिलो जारी है। अपने हरमुस बाबत ईरान ओमान जी कमेटी जी भी गड़जानी थी और उस बाबत मुशावरत कई वही। ईरान कतर में मुंजमद कल 12 अरब डॉलर से ईरानी असासन में 6 अरब डॉलर जारी करने मुतालबो कर छो। ईरानी सदर मसूद पेशिकियान है कतर में मौजूद ईरान जे 12 अरब डॉलर में 6 अरब डॉलर जारी थे घुर्जन। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के सलाहकार अली अकबर विलायती बहरेन के खबरदार क्यों था पेंजी हदन में रहे पेंजे मुस्तकबिल से रान न खेले ईरान के सख्त फैसलो करते मजबूर न कर वने।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।